नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत

0: देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Tanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of the 29th of July 2025, mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including

मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे यह हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल उपयोग यानी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक बैग को गलने में करीब 100 से 500 साल तक का समय लगता है, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि जमीन और समुद्र के जानवर इसे भोजन समझकर खा जाते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। नालियों को जाम करता है, हवा और पानी को जहरीला बनाता है ये प्लास्टिक। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बाजार जाते समय हमेशा कपड़े या जूट के थैले को साथ लेकर जाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को लेने से मना कर दीजिए, और जब भी आप मार्केट जाएं ना, हमेशा घर से कपड़े का या जूट का बैग साथ लेकर निकलें। जैसे पहले होता था, अपने साथ एक थैला लेकर जाते थे, वो लेकर जाइए और अपने पास रखिए। प्लास्टिक लेने से मना कर दीजिए। फल और सब्जियां अलग अलग रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय सूती की छोटी छोटी थैलियां बना लीजिए। जो पैकेज दालें और अनाज बाजार में खुला लिया जाता है सामान

ये आकाशवाणी है। अब आप म्यांमार से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद भी दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासर वेनेजुएला में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2,600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। पाकिस्तान में शराफी जोब शाहरा पर एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने से 40 अफराद हलाक और 8 दिगर जख्मी हो गए। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जहां मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया।

सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सचिव मूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी और सारी रिवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हुई। उम्मीद है कि पूरे भारत से लाखों अकीदतमंद इस 57 रोजा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल होगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए नूनवन और बालतल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ हजारों यात्रियों ने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की, जिसके दौरान ये लोग 3,880 मीटर ऊंची गुफा के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से होकर जाएंगे। अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांधरबल जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें तिब्बी कैंप, क्याम की जगह, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए हैं, ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इस इमारत में सालाना 20 लाख मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। जनाब मोदी जोधपुर में नजरसानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बालोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल, शहरी नकलो हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता हैं। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे, जहां वो सानंद में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल है, जिस पर 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फ्राहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज बातचीत से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसकी अहम वजूहत तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में इजाफा, तवानाई की मुंतकली और जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकतदार बनने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुश्तरक खुशहाली के हसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनूई जहानत इको निजाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि शराकतदारी, काबिल एतमाद मसनूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचा और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमाकारी और ताउन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इकतसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछले एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दो तरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1,000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खारजा ने तिब्बी राहत की जारी कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासर लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया है। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2,600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में SOHM, फिक्की, CAIT और CII समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती

0: को महाभारत के निजाम से मुतारफ कराना और सनअती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदऊ करना है। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क के नौजवान विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। पाकिस्तान में आज शरारती जोब शाहरा पर एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने से 40 अफराद हलाक और 8 दिगर जख्मी हो गए। यह हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के नजदीक दनासर इलाके में पेश आया। हंगामी तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले मरकज के मुताबिक जाय हादसा से 40 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और बचाव कार्रवाई जारी है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनेई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से बाज रहने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनेई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया था। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच कनाडा के वैनकूवर में खेला गया। स्विट्जरलैंड की तरफ से इम्बोलो ने खेल के 10वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि वक्फे के बाद नोडोए ने दूसरा गोल कर दिया। इस तरह स्विट्जरलैंड ने इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच न हारने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। इधर कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले मैच में स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर में फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाव करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तार के तहत जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहां तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए हैं और हजारों अब भी लापता हैं। फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم میں 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم میں 684 کلو ہرٹز کے علاوہ میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیا میں ترگیا نگیشبی نجبی کلو ہرٹس، میڈیا میں استونچی ناب گیا نگیشبی نجبی کلو ہرٹس، دونگاچی موبائل ایپ نیوز آن ایرکا نجس آکاشوانی کرگلی کا ناظرین وقت پو تسو تو غسون سک درین جاق پو شکر۔ جولائی زی سم درین فرد چپا یپتی پروگرام انجی بیس لاکھوری نگا چانیا انتی دنو کلپ سیوت نگا چی جون سلام پو فرد مچن سونشک سخ بچیس نالا دوائیا پروگرام صداقت لاغو زگ بیت دی پروگرامی رخصی کنین مزد سخم قرآنی تلاوتنا ترجمالا ملکان پو ان شیخ محمد عیسیٰ حافظی۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب، بسم الله الرحمن الرحيم.

दक्षा सपैन ते सदाकत प्रोग्राम या निनुत पिन मीडिया मुई कांग अचास आकाशवाणी करगी लिखा ना जाए निनुत कसा तंग अच्छी दिन फ्रो चुपत भी प्रोग्राम ने सुरपुना अस्के फ्रो चुपत भी प्रोग्राम ने खतुस बुला न्यान मजद अस्के ही में तुसो चुंगी सिका नेशनल न्यूज सर्विस का ना प्रोग्राम फ्रो चुकचस इन तुसो सुमिका ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस का ना प्रोग्राम फ्रो चुकचस इन दक्षा फितोगी तुसुत गाना मिनट सुमची का प्रोग्राम यन मजद रदेलुक्सी हगो तुसुत गाना मिनट सुमची नागे का प्रोग्राम यन मजद शेरबा नचुंगुनी फिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है।

0: नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लौसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal said India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap and is regularly reviewed. The Defence Acquisition Council has approved capital acquisition proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness of defence forces. The proposals for which approval has been given include procurement of anti-unmanned aerial vehicles, electronic warfare system Akash Tarang, man-portable anti-tank guided missile systems, medium-range surface-to-air missile weapon system, very short-range air defense system, among others. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has directed the constitution of a high-level expert committee under the Indian Council of Agricultural Research to examine the challenges being faced by Totapuri mango growers in Andhra Pradesh. The decision follows the Union Minister's recent visit to Andhra Pradesh, during which farmers informed the minister that prices of the Totapuri mango variety, which is cultivated extensively for the processing industry, have declined significantly in recent months. Mr. Chauhan said safeguarding the income and livelihoods of Totapuri mango growers is a priority for the government. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The government has ordered the removal of the BAT, BMS, Epoch I, Iron and Lossigy apps from the Google Play Store and Apple App Store with security concerns. The action followed after allegations that the applications were

0: तसा सपांतिस आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी ना अंग्रेजी खबरन यानी नुपिन मीडियम इकांग जस आकाशवाणी करगिली कना जेरिन्यूत
1: कह के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से कहो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करो, 30 दिनों में जवाब या कोई हल ना निकले तो CMS पोर्टल पर शिकायत करो। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चलें। लो आ गया नया किट बैग, RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: Jangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapille piece cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
6: 8700014242। सुनो ना।
5: हाँ।
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।

0: चार दो
1: ओ 8700142 42। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700042 42 पर।
2: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाजाबता आगाज, लगभग 12,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती एतिहाद का लाफानी बाप दिया करार। मुतअद्दिद शख्सियात और वफूद एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकी, अवामी नौइयत के मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने और लोगों के मियार हयात में बेहतरी लाने का दोहराया अज़्म। अब पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज यात्रा के दोनों पहलगाम और बालतल के रास्तों से बाजाबता तौर आगाज हो गया और आज पहले दिन लगभग 12,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इंतजामिया और दीगर महकमों और एजेंसियों ने यात्रा के एहसन इनकाद के लिए हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए हैं और यात्री इन इंतजाम से काफी मुतमइन हैं। यात्रा के ताल्लुक से पेश है अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
1: नुनवन बेस कैंप से जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिदीन ने एसएसपी अनंतनाग, अमूद अशोक नागपुरी और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि बालतल गांदरबल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। सुहाने मौसम के बीच बम बम बोले की गूंज में यात्रियों का कहना था ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर है। जिला इंतजामिया ने पहलगाम और बालतल के मुख्तलिफ पड़ावों पे यात्रियों के लिए जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी है। तिबी सहूलियात में भी काफी बेहतरी लाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार मुख्तलिफ राज्यों से यात्रियों की बड़ी तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे।

0: बालतल से साथी साबिर अयूब के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नुनवर बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद।
1: दरियासना 3,865 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था आज भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से वादी पहुंच गया। इनमें से 1,735 यात्री बालतल जबकि 2,130 यात्री पहलगाम के रास्ते गुफा की तरफ रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज पर श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। श्रद्धालुओं के नाम एक खत में नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यात्रा की बेहतर निजामत के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और हुकूमत जम्मू कश्मीर की तारीफ की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की भी सताइश की। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वो वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवियत बख्शते हुए यात्रा अखराजात का कम से कम 10% हिस्सा मकामी अशिया की खरीदारी में सर्व करें ताकि जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों और नौजवानों के रोजगार को बढ़ावा मिल सके। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रियों के नाम खसूसी पैगाम पर मबनी पैम्पलेट नुनवर और बालतल बुनियादी कैंपों में यात्रियों में तकसीम किए। इन श्रद्धालुओं ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस पैगाम को एक खुश आयन पहल करार देते हुए कहा कि इसकी बदौलत यात्रा के जज्बे को तकवियत हासिल होगी और यात्रियों की हौसला अफजाई भी मुमकिन होगी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी वसारी रिवायत की अक्कासी होती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आला मियार की खसूसी रेडियो नशरियात फराहम करने के लिए आकाशवाणी श्रीनगर में इस बरस भी एक मखसूस स्टूडियो कायम किया गया है। स्टूडियो से आज बाजाबता तौर नशरियात का आगाज किया गया। इस नशरियात की इब्तदाई रस्म डेप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग और स्टेशन के सरबरा गुरविंदर सिंह ने अंजाम दी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए इस नशरियात के जरिए मुख्तलिफ अकीदती प्रोग्राम नशर करने के अलावा उन तक जरूरी मालूमात भी पहुंचाई जाएंगी। इस मौके पर इंजीनियरिंग शोबे के डेप्टी डायरेक्टर प्रमोद कुमार, आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखून, सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव समीना शाह, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सुरेश चंद्र मीना, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा अशफाक अहमद शाह, सीनियर ब्रॉडकास्टर अशफाक लोन और खसूसी नशरियात के इंचार्ज वसीम फारूक भी मौजूद थे। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के एहसन इनाकात के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। शुमाली रेलवे ने बड़गाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान चलने वाली खसूसी विस्टाडोम रेल सर्विस में तौसी का ऐलान किया है। ये रेलगाड़ी अब 2 नवंबर 2026 तक एतवार के बगैर हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर ये रेलगाड़ी 31 अगस्त 2026 तक बानिहाल रेलवे स्टेशन पर मुख्तसर वक्त के लिए रुका करेगी। श्री कैलाक ज्योतिषोर वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सदर महंत रोहित शास्त्री ने आज लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में संस्कृत जबान और वैदिक स्टडीज को फरोग और तहफ्फुज देने से मुतालिक मुतादित अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में संस्कृत फैकल्टी असामिया वजूद में लाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। दरियासना आल कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन का एक वफद इसके चेयरमैन मंजूर पख्तून की कियादत में एलजी से मुलाकात हुआ। वफद ने हाउसबोट सेक्टर से जुड़े मामलात एलजी की नोटिस में लाए।

इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। ये सहूलत यकम जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तियाब रहेगी। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अथर आमिर खान की सदारत में आज जिला सतह की अमलावरी कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जिला से ताल्लुक रखने वाले उन नौजवानों की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया जो कारखानादारी के ख्वाहिशमंद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका हुकाम को मंजूर शुदा दरख्वास्तों के ताल्लुक से जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिले में एकलाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के बॉयज हॉस्टल के इल्तवा में पड़े काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के

इस दौरान भारतीय टीम आजकल इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाली पांच टी ट्वेंटी मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। सीरीज का दूसरा मैच कल मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समय समाप्त करें आज का तबसिरा।
1: आदाब, आज का तबसिरा लेकर मैं मुबशिर रुफाई। रिवायती सालाना अमरनाथ जी यात्रा 2026 के बाकायदा आगाज के मौके पर श्रद्धालुओं का पहला दस्ता आज सुबह बालतल और पहलगाम के बेस कैंपस से हिमालया में वाका अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। गांधरबल और अनंतनाग से रवानगी आज सुबह सवेरे हुई। बालतल बेस कैंप में बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश खरोश में कोई कमी नहीं देखी गई। बालतल गुफा के 14 किलोमीटर तवील ट्रैक पर जामे मैकेनिज्म फॉल कर दिया गया है। मौसम में मजीद उतार चढ़ाव की सूरत में यात्रियों की रिहाइश के लिए बालतल और नुनवन बेस कैंप्स में रिहाइश का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है। इसके अलावा मौसमी सूरत हाल खराब होने की सूरत में जम्मू से श्रीनगर तक मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी पनाहगाहें भी बनाई गई हैं। गुफा के दर्शन के लिए आज से ये सिलसिला यात्रा के इख्तिताम तक पूरे 56 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान जम्मू से बालतल और पहलगाम के लिए काफिलों की रवानगी रोजाना की बुनियाद पर होगी और रोजाना की बुनियाद पर ही दर्शन होंगे। श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल 3.5 लाख यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है और ये सिलसिला हनूज जारी है। 2 जुलाई को पहला जत्था 4,800 से जायद यात्रियों पर मुश्तमिल था, जबकि आज दूसरे जत्थे में 3,865 यात्री शामिल थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक यात्रा के रास्ते पर जाने वाले यात्रियों की रोजाना ज्यादा से ज्यादा तादाद को तय किया गया है। यात्रियों की हिफाजत और यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए इस रोजाना की हद की तामील लाजमी करार दी गई है। यात्रियों की सहूलत के लिए मुल्क भर में बैंक की शाखों और ऑनलाइन चैनल्स के जरिए यात्रा के आगाज से पहले ही पेशगी रजिस्ट्रेशन दस्तियाब कराई गई थी। ज्यादातर यात्री पहले ही इस सहूलत से फायदा उठा चुके हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए तत्काल इन्हें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्लॉट इंतहाई महदूद है। एडवाइजरी में तमाम यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी पेशगी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचे, लिहाजा तत्काल सहूलत के तहत रजिस्ट्रेशन किए बगैर जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को जगह देना मुमकिन नहीं है। ऐसे यात्रियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर ही सफर करें, क्योंकि बहुत से यात्री अपनी रजिस्टर्ड सफरी तारीख से पहले ही पहुंच रहे हैं। एडवाइजरी के मुताबिक किसी भी यात्री को उनकी रजिस्टर्ड तारीख से पहले सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले यात्रियों से कहा गया है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें। हर यात्री को यात्रा का मौका मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ मुकर्रर करदा तरीकेकार और दस्तियाब सलाहियत के मुताबिक ही मुमकिन होगा। यात्रा के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों के नाम एक पैगाम में अपील की है कि वो यात्रा के दौरान वोकल फॉर लोकल के जज्बे को अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि हमें अपने सफरी अखराजात का कम से कम 10% मकामी मसनुआत की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए, इससे जम्मू कश्मीर में खानदानों और नौजवानों की रोजी रोटी मुस्तहकम होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की है और कहा है कि यात्रा मकामी बाशिंदों की गर्मजोशी और खिदमत के जज्बे की अक्कासी करती है। बाबा बर्फानी की गुफा की ये यात्रा जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और आने वाले श्रद्धालुओं के तई मकामी लोगों की लगन को भी जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि यात्रा के रास्ते के साथ रहने वालों ने यात्रियों के इस्तकबाल और मदद में अहम किरदार अदा किया है। यात्रा के हर मरहले पर हजारों मकामी बाशिंदे यात्रियों का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हैं। पोनी वाले, कुली, दुकानदार और यात्रा

अभी वीर ज़ारा में आपने अहमद हुसैन और साथियों को सुना। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं कर्ज फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप जीत फिल्म में आपने सोनू निगम और अलका याग्निक को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। लीजिए प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं द बर्निंग ट्रेन से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामिन, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिली करेंगे। रिली का इंतजार कीजिए।

0: बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: तीस्ता इशू।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे।

0: मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधार कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की

पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे।

0: श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: अमली अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इनफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़राई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। यह फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। ये तादाद गुजश्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का एंडिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि यह आदादोशुमार नामुकम्मल है और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीव में रूसी हमलों से होने वाले नुकसानात की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बमबारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ रबते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: दक्षिण 35 आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दू खबर पिन मीडिया में कंगचस आकाशवाणी करगिल कना जैनत वक्स पे 200 मिनट सुमचे सोसुका सता प्रोग्राम यन मजद करगिल नामा प्रोग्राम फुट चुखन पिन खतीजा बानो प्रोग्राम प्रोड्यूसर